पाए, खसने करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए, मजहू गुआए अगला मोहिमो पाना खाए, जिस दत्ता खामना तिसका ही ऐसा बात।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम देने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय

0: बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज़्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

0: गुस्से विच कीता होया काम कदे भी पूरा नहीं हुंदा, क्योंकि गुस्सा अकल नूं खा जांदा है।
1: आओ हुण श्रवण करते हैं भक्ति संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

इना पलकां ने द्वार बंद कर मंच उसकी मूरत समाइए, उसे दर्शन करिए, ते ए सवेर खुशनुमा बनाइए। भक्ति संगीत प्रोग्राम आराधना तुसे इस वेले आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो सरवण कर रहे हो।

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवा से पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्रीराम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना, अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

0: यत्र ह्यः दुःखद अग्निप्रकोपः अभवत्। तस्मिन् भवने अनधिकृत निर्माणस्य विषये 16-2000 वर्षे विध्वंसादेशः प्रसारितः आसीत्, परञ्च मासद्वयाभ्यन्तरे एव आदेशः निरस्तः अभवत्। एतदतिरिच्य राज्यसर्वकारेण अग्निघटनायाः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशोऽपि प्रदत्तः। घटनायाः अन्वेषणार्थं SIT इति विशेष अन्वेषणदलस्य निर्माणमपि कृतमस्ति। दलं 7 दिनेषु एव स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पयिष्यति। ह्यः अपराह्ने दुःखद अग्निघटनायां न्यूनातिन्यूनं 15 जनाः मृताः। तेषु अधिकतया 16-25 वर्षीयाः छात्राः आसन्। अलीगंजनगरस्य पुरैनिया क्षेत्रे एकस्य आपणस्य उपरि कार्यरते एनिमेशन कोचिंग केन्द्रे अग्निप्रकोपः अभवत्, येन छात्रेषु आतंकः उत्पन्नः। नवव्रणिताः छात्राः किंग्स जॉर्ज चिकित्सकीयं विश्वविद्यालये KGMU लखनऊ इत्यत्र प्रवेशिताः च सन्ति। अधिकांशाः श्वासावरोधेन मृताः। भारतस्य हज समित्या हज 27-2000 कृते तीर्थयात्रिभ्यः आवेदनपत्राणि आमन्त्रितम्। नीत्याः विमोचनं कुर्वन् अल्पसंख्यक कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः ह्यः अवदत् यत् यात्रिणः भारतीय हज समिति पोर्टल तथा हज सुविधा एप माध्यमेन च आवेदनपत्राणि ऑनलाइन माध्यमेन प्रेषयितुं शक्यन्ते, येन प्रक्रिया अधिका सरला सुलभा च भविष्यति। FIH प्रो लीग लंदन राउंड इत्यस्य उद्घाटन क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलम अद्य पाकिस्तान दलम सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश ने अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 सालों दौरान कीतियां गईयां तब्दीलियां ने शासन अते प्रशासन विच जनता दे विश्वास नूं मजबूत कीता है। उत्तर प्रदेश दे लखनऊ च कल एक कोचिंग सेंटर विच भयानक अग लगण कारण 15 लोगों की मौत हो गई है, जिन्हां विचों ज़्यादातर विद्यार्थी सन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री ने दुखांत ते दुख प्रगट किया है। शिवसेना नेता ते महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि शिवसेना धड़े के 6 लोकसभा संसद मैंबर शिवसेना विच शामिल हो गए ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उलान बातर विच मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख उखना नाल मुलाकात की। बरतानिया प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री ते लेबर पार्टी के नेता वजो अस्तीफा देण दा ऐलान किया है। बीजेपी के कौमी प्रधान नितिन नवीन ने कहा है पछमी बंगाल की तरह पंजाब की माड़ी कानून व्यवस्था गैंगस्टरवाद नशे ते नौजवानों का प्रवास सूबे ते समुचे देश ले चिंता का विषय बने हुए ने। पंजाब मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों ते मापियां दे हितां दी राखी करन उद्योगिक विकास नूं उत्साहित करन डिजिटल गवर्नेंस नूं मजबूत करन ते प्रशासनिक पहुंच विच सुधार लियाउण दे उद्देश नाल कई अहम फैसले लए ने। अमृतसर पुलिस ने फिरौती ते गोलीबारी दीयां वारदातां नूं अंजाम देण वाले गैंग दे 3 शूटरां नूं गिरफ्तार किया ते मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच 26 जून तक गरज चमक नाल मींह पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया है। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ।

0: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ T20 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ICC T20 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ FM ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਤੋਂ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
1: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਵਜੇ ਨੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ। 8 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ।
2: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
3: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़

0: भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैदाप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है, तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में

0: नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे चार भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लोव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हुरमुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे, हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
2: Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
3: 25 crore log garibi se bahar nikle hain, new middle class mein aaye hain, to iska fayda keval un

0: एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व पद्धर से उथल पुथल के बावजूद भारत में बेमिसाल मौके पैदा हुए ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शामी राष्ट्रपति भवन विखे दूजे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह दौरान कुल 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिन्हां विच 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्म श्री शामिल ने। प्रसिद्ध टेनिस खिडारी विजय अमृतराज, अदाकार मामूटी, गायिका अलका याग्निक, क्रिकेटर रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार हासिल करने वाले में शामिल ने। गणतंत्र दिवस मौके सरकार ने साल 2026 5 पद्म विभूषण समेत 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में एक ने। यह पुरस्कार कला, साहित्य, सिक्ख्या, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, दवाई, खेडां समेत वख-वख खेत्रां विच विलक्खण प्राप्तियां लई दित्ते जांदे ने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कल नवी दिल्ली विच 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारां दी मीटिंग दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग जी नाल दवली गल्लबात की। मीटिंग विच दोहां देशां विचकार संबंध

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

मोहम्मद रफ़ी ते लता मंगेशकर हुणा ने इस फिल्म दे गीत गाए सन ते सारे ही गीत सुपरहिट होए सन। इस फिल्म दी शूटिंग दौरान कहा जाता है कि निर्देशक मोहन कुमार दी सेहत खराब हो गई सी ते उस समय राजेंद्र कुमार ने फिल्म दे काम नूं अगे वधाउण दे विच वड्डी भूमिका निभाई सी ते शूटिंग दे प्रबंध दा जिम्मा संभालिया सी। इसलिए उन्होंने ना सिर्फ इस फिल्म दे विच अदाकारी भी की, कह सकते हैं कि इस फिल्म नूं उन्होंने संभालिया भी ते डायरेक्शन दे विच भी अहम भूमिका निभाई। शायद इसे करके उन्होंने जुबली कुमार भी कहा जाता है। तो हुण इस फिल्म का अगला गीत लता मंगेशकर ते मोहम्मद रफ़ी उन्होंने आवाज़ में सुनते हैं।

फिल्म आ पाए बाहर आई दा ए गीत बहुत सुपरहिट रहा सी। ते इस फिल्म दा ए गीत जो भी खूबसूरत सैड सॉन्ग्स ने उन्होंने विचों मन्या जांदा है, ते इस गीत नूं तां लोग पसंद करते ने अज भी। इस फिल्म दे बाकी गीत भी सदाबहार ने। जेकर असी इस फिल्म दे रिलीज़ दे दौर की गल करिए तो उस दौरान राजेश खन्ना दा स्टारडम चरम ते सी ते बॉलीवुड विच उन्होंने फिल्मां दा दबदबा सी। इस कारण आ पाए बहार आई फिल्म उम्मीदों के मुताबिक वड्डी कमाई तो नहीं कर सकी, पर बॉक्स ऑफिस से नाकाम भी नहीं रही। तो फिल्म की सब तो वड्डी सफलता तो इसे गीत मन्ने जाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग की जेकर गल करिए इस फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर जम्मू ते कश्मीर दे विच इसे दृश्य फिल्माए गए सन, जिसके कारण इसकी सुंदरता होर भी ज़्यादा वध गई। तो इस फिल्म की जो रोमांटिक स्टोरी सी उस विच इना सीन्स ने भी बहुत वड्डी भूमिका निभाई। हुण प्रोग्राम च इस फिल्म चो अगला गीत हेमलता मोहम्मद रफी ते साथियों दी आवाज़ विच आओ सुनदे हां।

0: कार तो काम करो, वादू तनखा बस एक क्लिक दे। वाजी वाह।
1: फसी।
2: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो। आरबीआई कहंदा है,
1: जानकार बनो, सुचेत रहो।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण गज़लां पेश कर रहे हैं। सब तो पहला सुनाउण जा रहे हैं जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह दी आवाज़ विच गज़ल।

तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको न भूल पाएंगे। ये अगली गजल है अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन देवास।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया।

0: प्रोग्राम हैलो फरमाइश, अगले कॉलर दोस्त देखते हैं केड़े आई नहीं। हैलो,
1: हाँ जी नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैडम जी मैं सीताराम बोल रहा हूँ, जलंधर मॉडल प्राइमरी स्कूल से।
0: हाँ जी सीताराम जी, की हाल चाल नहीं?
1: बस बढ़िया जी मैडम जी, आज तो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है।
0: बिल्कुल जी, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो होएगी, पर चलो हुण बिच-बिच बरसात भी हो जाती है, आने वाले एक दो दिन तक हो जाएगी बरसात।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: प्रोग्राम सुनते हो डेली तुसी सीताराम जी?
1: हाँ जी रोज सुन रहे हैं जी।
0: अच्छा जी, की काम काज करते हो?
1: काम तो मैडम जी फिलहाल से कुछ नहीं करते, इसे पढ़ाई हो गई
0: अच्छा
1: पूरी,
0: ठीक
1: हमने
0: है,
1: बस नौकरी दे
0: तैयारी कर रहे हो? ठीक है
1: परमात्मा लो। हाँ जी
0: ठीक है जी।
1: हाँ
0: बेस्ट
1: जी
0: विशेस साडे वालों। गाना केड़ा सुनोगे तुसी?
1: राम तेरी गंगा मैली जल सुनना जी, गाना यही गाना सुनना है। हाँ जी
0: टाइटल सॉन्ग सुनना चाहो तुसी?
1: हाँ जी राम तेरी।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। इन्हों की पसंद लता मंगेशकर होना आवाज़ में ये गीत सुनते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्र हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां नागरिकों की प्रतिबद्धता से हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर,

0: ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 16वें ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कल हुई इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में बिना किसी उतार चढ़ाव के खुला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 20 अंक की बढ़त के साथ 77,116 पर, जबकि निफ्टी 24,098 पर बना हुआ था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।
3: माने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी है बिल्कुल जी, मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। लेके हाजिर हाँ जी प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी। अज दे इस प्रोग्राम दे विच रोजाना दी तरह तुहारे बहुत सारे व्हाट्सएप ते सुने है। बिल्कुल जी,

लो जी दोस्तों, इस गीत तो बाद आओ देखते हैं अगलियां फरमाइशां साढ़े कोल किनारियां आईया ने। डुमराव बिहार तो ये फरमाइश है जी डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी दी, डॉक्टर सोनम अदीबादी ते नाल ही नाल दानिश अंसारी होना दी। गोला बाजार बक्स तो ये फरमाइश है जी श्रद्धानंद आर्या दी, अभियनंद ते अभियानंद परमानंद आर्या होनी इन्हां दे नाल। ते नाल ही नाल अगली फरमाइश साढ़े कोल आई है बक्स बिहार तो, ते माफ करना बक्सर बिहार तो, शरूफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी ते सुरित रमेश राहू होना दी फरमाइश। अगला मैसेज भेजे है जी सानू निसार सलमानी होना ने, नौशाद सलमानी बीबी आलिया ते आयान बाबू होना दी फरमाइश है धनुरी तेली वाला तो। अगली फरमाइश भेजन वाले ने सुखदेव कलेर ते नाल ही इन्हां दे नरेश संतोष रानी पूजा रानी पुनीत निगाह ते नाल ही इन्हां दा शुभदीप कलेर वार्ड नंबर 21 बल्ला चोर तो इन्हां ने फरमाइश भेजी है जी। ते हाँ ये फरमाइश आई है जी सानू अगली शुभदीप होना दी, इन्हां ने भेजी है ये फरमाइश वार्ड नंबर 1 तो बल्ला चोर तो। अगला मैसेज साढ़े कोल पहुँच गया जी, कहिंदे तमक जलंधर प्रोग्राम दे विच सानू शामिल जरूर करिया करो। बिल्कुल जी, तुसी शामिल हो रहे हो। फांसी हिसार तो ये मैसेज है जी, ते भेजन वाले ने राजकुमार डुड्डी प्रमोद कुमार डुड्डी ते इन्हां दे नाल पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी होना दी फरमाइश। अगला मैसेज है जी, कहिंदे गीत कोई भी सुनाइए पर नाम साडा जान ना दियो। बिल्कुल जी, लेवाई छत्तीसगढ़ तो मैसेज है गुलाबदास मानिकपुरी होना दा, इन्हां दे नाल राजा दास रानी मानिकपुरी। अगला मैसेज पहुँच गया जी संदीप मक्कड़ होना दा, इन्हां ने ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ ते नाल ही भरत मक्कड़ होना दे नाल मैसेज कीता है। कमल सानी ते इन्हां दे बाकी साथी जड़े ने वो नाल ने। हाँ, चौंक गराया जलंधर तो मैसेज आया है। हाँ लॉर्ड जी, तो साढ़े स्रोते जड़े ने वह सानू आगाह भी कर रहे ने कि कहड़े मैसेजिज जड़े ने वो सही ने ते केड़े नहीं ने। अगला मैसेज पहुँच गया है जी साढ़े कोल नमस्कार दे नाल बड़ी खूबसूरती दे नाल सजाया होया मैसेज जगदीश धाकड़ होना दा, नाल इन्हां दे रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह धाकड़ ते नाल ही शिवांगी धाकड़ होनी। इन्हां ने मैसेज सानू किया है जी आलोट तो, जिला रतलाम MP तो मैसेज आया जी। अगला मैसेज पहुँच गया है जी पिंड गुराए तो डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो लक्ष्मीर सिंह अमनजीत सिंह रतमानजोत कौर ते नाल ही इन्हां दे नाल गुरु तेजवीर जड़े ने वो ने, ते इन्हां सारिया ने मैसेज करके अपनी पसंद का गीत भी जड़ा वो भेज दिता सानू। चौटाला हरियाणा तो मैसेज है जी दारा पंडित होना दा, संजय शर्मा प्रियंका शर्मा इदा ने नाल ने। ते हाँ जी, कहिंदे ने कि गीत असी यह वाला सुनना चाहते हैं। बिल्कुल जी सुनावांगे, चकला बाजार समाना शहर तो पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी जिंदल होना दा मैसेज। पप्पू स्माइल खुशदिल होनी ते हंस मुखी लाल जिंदल इन्हां दे नाल नी, स्वीटी सुनीता बंटी जिंदल ते आरजू महक खुशी जलंधर ते इन्हां दे नाल ही अगे इन्हां दा खुशदिल परिवार ते कहिंदे ने पूरे परिवार वालों आरजू महक होना ने भी मैसेज किया है। तो सारे पासे मैसेज दे विच खुश खुश ते खुश लिखा होया ते बहुत सारे खूबसूरत इन्होंने मैसेज नू रंगीन किया है फुलां दे नाल मोरां दे नाल गुलाबां दे नाल। लो जी पहुँच गया मैसेज। अगला मैसेज साढ़े कोल आ गया है जी सैक्टर 20 तो ए चंडीगढ़ तो निशाल राश ऋषि ते इन्हां दे नाल संजू ऋषि सौरव कृतिका लड्डू ते अमरजीत होना दा मैसेज। नीलम नीलम ऋषि ते

राहुल ऋषि ते ऋषि का ऋषि इन्हें सब का मैसेज साढ़े को पहुँच गया है जी, तो पसंद का गीत भी साढ़े तक आ गया है। श्री गंगानगर तो मैसेज है जी जगमोहन सिंह अनेजा होना दा, ते नाल ही नाल बजरंग शर्मा सोनू मिंटू करण ते हरगुन होनी इन्हों के नाल। ते हां जी पसंद का गीत भी पहुँचा दिता इन्होंने नालों नाल। कृष्ण धीमान होना का मैसेज है जी, तो इन्होंने प्रियंका धीमान होना के नाल मैसेज साढ़े तक पहुँचाया है। तो इन्हों बहुत सारे दोस्त जड़े ने वह भी मैसेज जड़ा पहुँचा रहे हैं। केंद्र ने मिर्जापुर कुरुक्षेत्र तो मैसेज कर रहे हैं यशपाल धीमान श्रीमती कृष्णा, तो नाल ही ना अभिमान। अगला मैसेज है जी राहुल कोमल शुभम धीमान होना का प्रेम, तो इन्हों के नाल आंचल पुंछ, तो बहुत से इन्हों के साथी जड़े ने उन्हों का नाम लिख के इन्होंने भेजे है सानू। अगला मैसेज पहुँच गया है जी नमस्कार प्यार भरी लिख रहे ने, तो ये मैसेज है जी चक 15 तो PS ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान तो सरबजीत सिंह जोसन होना का मैसेज, सरबजीत कौर जोसन ते नाल ही गुरमंत्र होनी। अगला मैसेज सानू आदर्शपाल सिंह होना का है, ते नाल ही नाल रोबिन सिंह होना का मैसेज। तो बड़े सारे जड़े शहर के नाम ने ना वो भी इस मैसेज के विच लिखे हुए ने, ते बिल्कुल साडे दोस्तों तक पहुँच रहा है। हीरा बाग जगराऊ होना का मैसेज इत्थे मैसेज भेजन वाले ने जगदीश पाल मेहता, लीलावती मेहता, हरदीप पाल मेहता, अंजू बाला मेहता, तो पारुषी मेहता होना का, दीपांशु मेहता इन्हों के नाल। अगला मैसेज पहुँच गया जी नमस्कार दे नाल, ते हाल चाल भी पूछे ने। बिल्कुल जी बहुत ही दुरुस्त हाल चाल ने। मलियान सरधरा ते मेरठ तो मैसेज आया अनिल जैन जैन साहब ते संयम जैन होना दा, मुस्कान जैन ते इन्हां दे नाल जीवियम जैन नाल ने। बिल्कुल जी साढ़े बहुत सारे दोस्त जड़े ने ना इस प्रोग्राम दे विच भी फरमाइश करदे ने कुछ हिंदी गीतां दी। जेकर हिंदी गीतां वाली फरमाइश पुगानी है तो फिर साड़ी लाइव फोन इन प्रोग्राम हैलो फरमाइश दे विच तुसी जरूर शामिल हो सकते हो। वट्सअप दा ए वाला समा ए वाला टाइम है साड़े पंजाबी गीतां दी फरमाइश दे लई। तो लो जी इन्हां सारे दी फरमाइश दे प्रोग्राम दे विच अगला गीत असीं तुहानू सुनवा रहे हां करमजीत अनमोल होना दी आवाज़ दे विच।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। इन्हें न्यूज ऑफ ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने

0: राष्ट्र हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। दिन दे 12:05 होए ने। पेश है जी प्रोग्राम वजदे वेड़े।

0: भी हो गई और लुब्रिकेशन, ब्लड सर्कुलेशन तुहाडा जोड़ा जो दौड़ना शुरू हो गया, तुसी अच्छी तरह घर दे काम कर रहे हो और अच्छी तरह बच्चा नु संभाल रहे हो। लेकिन उन्दे विच एक चीज होर होंदी है कि एक खुशी दे कुछ हार्मोन्स होंदे ने शरीर विच, वो योग नाल डिवेलप हो जांदे ने। औरत खुश रहेगी तो बुढ़ापा कित्थों आएगा, लचकीलापन रहेगा तो बुढ़ापा कित्थों आएगा। और दूसरा, चेहरे पे अगर बुढ़ापा आ रहा है, चेहरे तो पता लग रहा है, तो चेहरे दी एक्सरसाइज, ऐसी ऐसी एक्सरसाइज ने तुसी डेली उन्हों सिर्फ 5 मिनट डेली अगर कर दे रहो तो चेहरे तो पता ही नहीं लगेगा एज कितनी है। और वैसे भी एक योग च एक आसन है जिन्होंने नाव आसन कहते हैं, अगर वो धीरे धीरे वो सीख ले, वो करना शुरू कर दे, तो उनके नाल की होंगे कि रीढ़ के जिन्हें 33 दे 33 विटामिन्स ने वो फ्लैक्सीबल रहते हैं। रीढ़ जिंदी फ्लैक्सीबल है, जवानी कायम है, बुढ़ापा कितों आएगा। और फिर अगर ज्यादा एज की उम्र, कोई ज्यादा एज की उम्र की लेडी है, वो कहती कि मेरे को होर कुछ नहीं होएगा, तो कुछ डंबल वगैरह करके अपने मसल नू स्ट्रोंग कर सकते हैं। प्रोटीन की कमी अगर नहीं रखेंगे, बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापे नू रोकया जा सकता है। योग में इतनी क्षमता है।
1: ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਤੀਸ਼ ਮੰਜਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ?
0: बस शैटिका पेन है, कमर दर्द है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, प्रॉब्लम ज्यादा लेके आ रहे हैं आजकल। शैटिका पेन कमर दर्द होंगी है ना, कमर दर्द होंदे होंदे ना L4 L5 विच जोर पै जाता है। लेकिन
1: ओके
0: उनका अगर इलाज ना किया जाए तो S1 विटाब्राज होंगे जो L5 के नीचे होंगे, अगर वो थोड़ा जहा भी ऊपर नीचे हो जाए तो फिर शैटिका पेन हो जाती है। छटिका पेन वास्ते इलाज है, योग सब चीज का इलाज है। एक कटी मुद्रा कितने भी तुसी देख सकते हो, नेट से देख लो, कितने भी देख लो, एक कटी मुद्रा है। अगर वो 15 15 मिनट दिन च 3 वारी अगर उस पोज च उस मुद्रा बना के लेट सकते ने तो छटिका ठीक हो सकती है।
1: ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ?
0: ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ, खुश रहेगा तो अच्छी तरह काम कर पाएगा, अच्छी तरह काम करेगा तो होर खुशी होएगी उन्हों, फिर अपना दिनचर्या ठीक रखेगा, रात का खाना जल्दी खा लेगा, फिर सवेरे सैर पे चला जाएगा। और सैर पे जाने वास्ते की होंगे, एक समस्या होर आती है, सारी चीज़ा आदमी की ठीक होंदिया ने, लेडीज भी सारी चीज़ा ठीक ने, अच्छा खाना खा रही है, अच्छा सोच है, खुश भी रहती है, आसन भी करती है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है उन्होंने। तो वो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम ध्यान नाल सुन लो, उस प्रॉब्लम का नाम है डिस्टरबेंस ऑफ द नेवल पॉइंट। ये इमोशनल लोगों को जल्दी आती है, तो जो डिस्टर्ब हो जाती है नेवल पॉइंट, वो सारे जड़ है सारी प्रॉब्लम्स का, क्योंकि डॉक्टर्स उन्होंने समझ नहीं पाते और लेडीज पता नहीं लगता मैनू हो की रहा, मैं
1: जी
0: अच्छा खाना खा रही हूँ, अच्छा सब कुछ कर रही हूँ, वो जरूरी है, उन्होंने देखना बहुत जरूरी है।
1: यानी कि योग जरूर करना चाहिए है, कसरत जरूर करनी चाहिए है, ताकि असी बहुत सारी बीमारियों तो बच सकिए। सो सतीश जी, तुसी बहुत सारी गल्लां बातां सांझे कीतियां और की सुनेहा दियोगे?
0: हाँ, योग दिवस तां इस वास्ते साडे थैंक यू साडे प्रधानमंत्री नूं, 170 देशां च योग एकदम ही चालू करता, और जदों शुरू होया सी है, तो उस तो बाद 2015 च यूके च मेरा डेमो सी, वो डेमो पूरे वर्ल्ड ने देखा सी, ते वो मैंने वैसे गल याद आ गई तुहानू दस दिया, पर मैं संदेशा तो यही है कि योग तो बिना कुछ नहीं है। योग का मतलब की होंगे 8 अंग, अष्टांग योग, 8 अंग नू तुसी अपना लो। अंग केड़े केड़े ने? यम है, यम संसार विच रहन दे नियम होंदे ने, और नियम है, नियम अपने शरीर दे नियम होंदे ने अनुशासन च रहना। फिर उस तो बाद आसन आंदा है, कुछ आसन सीख लो, उस तो बाद प्राणायाम आंदा है। प्राणायाम करते करते तुहानू प्रत्याहार की आदत पैनी शुरू हो जाती है, प्रत्याहार की आदत पेगी तो धारणा एकदम लगनी शुरू हो जाएगी, धारणा तो बाद एकदम तुसी ध्यान च उतर जाओगे, क्योंकि योग करते करते तुसी ध्यान की आदत पै जाएगी, क्योंकि योग अभ्यास तो बाद, एक अभ्यास तो बाद जो तुसी रेस्ट करते हो तो वो ध्यान ही है, क्योंकि विदाउट माइंड की अवस्था है जो तुसी सोते।

0: वो ध्यान ही है। ध्यान करते करते समाधि की अवस्था, मतलब ध्यान लंबा हो जाएगा, तो फोकस जड़ा है इन निराकार से पहुंच जाएगा, ध्यान लंबा हो जाएगा तो समाधि की अवस्था है, तो उस बाद कोई प्रॉब्लम आएगी? कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वास्ते। और ये ना सोचो कि यम शुरू करेंगे फिर पता नहीं कदों आसन की बारी आएगी, नहीं, आजकल एडवांस जमाना है, तो आसन तो शुरू करो, यम और नियम दे जिहड़े पालन ने वो तुहाडे कोल अपने आप होंदे चले जाणगे और तुसी स्वस्थ और खुश भरी लाइफ बिता पाओगे।
1: ते जेकर हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, अपने आप नू निरोग रखना है, तो योग रखे निरोग। सतीश पंजाल जी, तुसी इस बारे जानकारी दी, जानकारी देने लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू तुसी मैनू टाइम दिता इन वास्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
1: असी गल्लां बातां सांझे कर रहे सी योग गुरु सतीश मुंजाल जी नाल।

0: ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ 1 ਵਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से nafix.in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74,00,000 किसानों की सेवा कर रहा है।
1: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
3: They all constitute an important threats for us.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप,

0: और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी जारी है। अयोध्या मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने के बाद विरोध पर इस प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। हॉबिट्जर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां।
3: माने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 1:06 होए ने, आ हुण तुहानू अज दे प्रसारित होण वाले बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दी जानकारी दे दईए। दिने 1:15 तो लैके 1:40 तक, ते फिर 2 तो लैके 2:15 तक दा समां रहेगा प्रोग्राम फौजी वीरां लई दा। दिने 2:30 रंगली धरती प्रोग्राम दे विच जीत लाल लहरी ते साथियां तों माता दियां भेटां सुनोगे। साडी दूसरी सभा दे शुरू विच मुख खबरां तों बाद 4:02 ते लैके हाजिर होवांगे पंजाबी फिल्म संगीत। शाम 4:30 असी तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलांगे, जिथों तुसी शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे। 5:30 दा समा रहेगा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार दा। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम दे विच कम दियां गल्लां मंडियां दे भा दे नाल नाल कमाद दी देखभाल बारे डॉक्टर गुलजार सिंह संदेड़ा दसणगे। होर गीत संगीत भी होएगा। 7:40 ते अंग्रेजी वार्ता सुनोगे मिनिमलाइजम। लाइवनिंग मोर विद लेस मधु शर्मा होना दी। रात 8:00 समा रहेगा प्रोग्राम जिंदगी हसी।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ।

फौजी वीरो जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा तुहाडे ही प्रोग्राम दे विच। ते रोज़ दी तरह लैके हाजिर हो गए हाँ तुहाडे दी खूबसूरत नगमिया दा ए पिटारा। ते फिर प्रोग्राम दे विच आओ सुनवाने हाँ तुहानू ए पहला गीत मन्ना डे होना दी आवाज़ दे विच।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

गाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक।

0: फौजी वीरों, खूबसूरत गीतां दा सिलसिला चलेगा, पर जिहड़ा वेला ना वह इशारा कर रहा है कि प्रोग्राम नू कुछ देर दे लई इत्थे ही थामना पएगा, क्योंकि आकाशवाणी तो समा हो रहा है समाचारां दा। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। दिन दे 1:40 हो रहे ने। आओ हुण सुणदे हां पंजाबी दे विच खबरां।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल ने नवी सुरक्षा खतरियां ते चुनौतियां प्रति सुचेत रहने की लोड़ ते जोर दिता है। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नाफेड ते नीलामी पोर्टल nafix.in नूं लॉन्च किया। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौसम ते अल नीनो प्रभाव अते खेतीबाड़ी ते इसके असर बारे एक जायजा मीटिंग की। किसानों नूं कोई मुश्किल दरपेश ना आउण देण दी सरकार दी वचनबद्धता प्रगटाई। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि भारत ते अमरीका एक मजबूत दवले व्यापार समझौते नू अंतम रूप देण वल फैसला कुन तौर ते अगे वध रहे ने। अयोध्या दे राम मंदिर नू मिले दान दी हीराफेरी दे इल्जामां दी जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT ने अपनी मुढ़ली जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार नू सौंप दित्ती है। हुण खबरां विस्थार नाल। भारत ने अमरीका ते ईरान विचकार होए समझौते MOU दा स्वागत किया है। नवी दिल्ली विच 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारां दी मीटिंग नूं संबोधन करदिआं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल ने कहा कि यह दुनिया भर विच ऊर्जा सुरक्षा नूं मजबूत करेगा। उन्होंने होरमुज़ पणजोड़ दे खुलण दा भी स्वागत किया अते इस गल ते जोर दिता कि यह सप्लाई लड़ी दीआं रुकावटां नूं दूर करन अते खादां ते रसायणां वर्गीआं वस्तां दी घाट नूं हटाउण विच मदद करेगा। श्री डोवाल ने इस गल ते भी जोर दिता कि खेतर अते इस तों अगे नैविगेशन दी वधेरे आजादी आर्थिक खुशहाली विच योगदान पाएगी। उन्हां कहा कि दुनिया फौजी टकरावां, भू सियासी अनिश्चितावां, आर्थिक तनाव अते विघनकारी तकनोलॉजियां वाले एक उथल पुथल दे दौर विचों लंघ रही है। उभर रहीआं सुरक्षा चिंतावां नूं उजागर करदे होए उन्हां कहा कि गैर रवायती खतरिआं ने राष्ट्रीय सरहदां नूं पार कर लिआ ते रवायती प्रतिक्रियावां नूं चुनौती देण वालियां समर्थावां विकसित कीतियां ने। उन्हां ने एक वधदी डिजिटाइज्ड दुनिया विच नवीआं विघनकारी तकनोलॉजियां, दहशतगर्दी ते वधदे होए लुकवें रूपां अते साइबर खतरियां दी पछाण ते समूहिक ध्यान देण दी लोड़ वालियां चुनौतियां वजों कीती।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
1: श्री डोवाल ने इस गल ते जोर दिता कि ब्रिक्स देशां दी वख-वख महादीपां अते तजर्बियां दी नुमाइंदगी करन दे बावजूद तेजी नाल बदल रहे संसार विच एक विशेष भूमिका है जिथे टकराव दे हल दे रवायती साधन घट प्रभावशाली हुंदे जा रहे ने। उन्हें भी कहा कि समूले ये अहम है कि वह इन्हां विकसित हो रही चुनौतियां नूं हल करन विच अपनी भूमिका ते विचार करे। ब्रिक्स की भूमिका का हवाला देंदे हुए उन्हें कहा कि समूह नूं एक होर बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था नूं उत्साहित करन, आर्थिक सहयोग नूं मजबूत करन अते आलमी दखण दी आवाज़ नूं वधाउण लई उभर रही आर्थिकतावां दे एक गैर रस्मी गठजोड़ वजों तैयार किया गया सी। उन्हें कहा कि ब्रिक्स ने आलमी शासन

0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अता करेंगी। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए आबनाए हुरमुज खोले जाने का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातजा भर्ती के इम्तिहान में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में तमिलनाडु में 18 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। लियोनेल मेसी फीफा आलमी कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वो अर्जेंटीना नॉकआउट मरहले में सबसे आगे हैं। आज लंदन में FIH प्रो लीग हॉकी मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अदा करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री में अता किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनाकिद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरिया 65वें पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड्स हासिल करने वालों में 19 खवातीन भी शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद अज़ मर्ग ये अवार्ड्स दिए गए हैं। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज अदाकार मम्मूटी फिल्मी गुलकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मस्कूरा अवार्ड्स गैर मामूली खिदमात के तरफ में तफवीज़ किए जाते हैं और आर्ट सामाजिक काम अवामी उमूर साइंस इंजीनियरिंग तजारत और सनत अद्वियात अदब व तालीम खेलकूद सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दिद शोबों में अता किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज़ दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म की सीरीज के तहत खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड से याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किए जाएंगे।
2: मैदाब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सीख के लिए वही

0: गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के दिन के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने डॉक्टर मुखर्जी को एक नामवर माहिर तालीम अजीम मुजाहिद आज़ादी और एक दूर अंदेश रहनुमा करार दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मुमताज मुहिब वतन स्कॉलर और मुदब्बिर डॉक्टर मुखर्जी को खिराज अकीदत पेश करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जिंदगी मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर दी थी। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड मुल्क में तकरीबन 74 लाख किसानों की मदद कर रहा है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नेफेड ऑक्शन पोर्टल nefex.in के लॉन्च के मौके पर कही।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे। सिर्फ कृषि उत्पादों की खरीदी तक नाफेड सीमित नहीं रहा है, विगत 3 साल में नाफेड ने बहुत अच्छा काम किया और इसके कारण नाफेड की प्रासंगिकता भी बढ़ी है और मुनाफा भी बढ़ा है।
1: जनाब शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत भी पेश किया। वजीर दाखिला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि वो कौम परस्ती, सकाफती कौम परस्ती और भारतीय सकाफत के हामी थे। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मफाहमत नामे का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि इस मफाहमत नामे के नतीजे में दुनिया भर में तवानाई की सप्लाई मुस्तहकम होगी। उन्होंने आबनाए हुरमुज खोले जाने का भी खैर मकदम किया और कहा कि इससे सप्लाई में हायल रुकावटें दूर होंगी और कीमियावी अशिया और कीमियावी खाद जैसी चीजों की किल्लत पर काबू पाया जा सकेगा। जनाब डोभाल ने कहा कि खित्ते और खित्ते से बाहर जहाजरानी की ज्यादा पेशरफ्त से इक्तसादी खुशहाली को फरोग हासिल होगा। जनाब डोभाल ने मजीद कहा कि आज दुनिया अफरा तफरी के दौर से गुजर रही है जहां फौजी तनाज़ियात, जोग्राफियाई, सियासी गैर यकीनी इक्तसादी मसाइल और ऐसी टेक्नोलॉजी भी सामने आ रही है जो रुकावट डाल सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातिज़ा की भर्ती के इम्तिहानात के मामले में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 जगहों पर छापे मार रहा है। डायरेक्टोरेट का कहना है कि मरकजी क्राइम ब्रांच की जानिब से 2017 में दर्ज की गई FIR की बुनियाद पर यह कार्रवाई की जा रही है। उसने ये भी बताया कि पुलिस ने 2021 में इस मामले में फर्द जुर्म दाखिल की थी। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की रकम में खुर्दबुर्द के इल्जामात की छानबीन करने वाली खसूसी जांच टीम ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट सौंप दी है। लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने उमूर दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट दी है। हुकाम का कहना है कि तफ्तीश अभी जारी है और मजीद हकायक जमा किए जा रहे हैं। ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एल नीनो के मौसम और ज़राअत पर असरात के पेश नज़र आज नई दिल्ली में सूरत हाल का जायजा लिया। इस मीटिंग में कई रियासतों के ज़राअत के वजीरों, सेक्रेटरीज, जिला कलेक्टरों और दीगर अहलकारों ने शिरकत की। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, मकरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके अलावा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, तेलंगाना और केरला में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में आज सुबह सवेरे फिलाडेल्फिया स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। इस तरह फ्रांस ने नॉकआउट मरहले में

0: जगह बना ली है। एक दूसरे मैच में नॉर्वे ने आज न्यूयॉर्क स्टेडियम में ग्रुप आई के एक मैच में सेनेगल को 2-3 से हरा दिया। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने पहला गोल 38वें मिनट में किया जबकि दूसरा गोल मैच के आखिरी लम्हात में किया। इस तरह फीफा वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 18 गोल कर चुके हैं और वो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मर्दों के FIH हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ कप्तान से होगा। चीन के हुलनबर्ग में मुनाकिदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में गैर फौजी एजाजात देने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग से खिताब करते हुए आबनाए हुरमुज खोले जाने का खैर मुकदम किया है और इससे सप्लाई में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट असातिज़ा भर्ती के इम्तिहान में मुबैना धांधलियों के मामले के सिलसिले में तमिलनाडु में 18 जगहों पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दे रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: फौजी वीरों एक बार फिर तो स्वागत कर दिया तुहाडा प्रोग्राम फौजी वीरा लेच तेलो आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो एक बार फिर तो हाजिर हो गए खास तुहाडे लिए। ते हुन फौजी वीरों जज्बातों नू शब्द देन दा रूप जिथे दिल दी गल सुरां विच टलदी है ते मुहब्बत शायरी बन के महफिल विच उतर जांदी है। पेश है जी बेहद खूबसूरत नगमा फिल्म साजन चो आवाज़ अलका याकिनी होना दी।

0: ਇਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआत मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है। तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सीख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार

0: पार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्र ध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं, और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
3: They all constitute an important threat for us.
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा

0: कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के

0: चिटिल पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। रंगली धरती आज दे इस प्रोग्राम दे विच लेके हाजिर हुए हैं माता दियां पेटां। जी हाँ, रंगली धरती दे आज दे इस प्रोग्राम दे विच सुनदे हैं माता रानी दी महिमा नाल भरियां माता दियां पेटां, जीत लाल लहरी ते साथियां दियां आवाज़ां दे विच।

जी बिल्कुल, इस गीत विच भी जे तुसी ध्यान नाल सुनिया होएगा तां सूई धागे दी जो है गल कीती गई सी। ते जी बिल्कुल, सूई धागे दी भी गल करांगे। फिलहाल तुहाडे खत सानू जो है आवाज़ा मार रहे ने, क्योंकि तुसी सोच रहे हो कि पहला जो गीत सुनाया सी उस विच भी जो है, यानी कि फुलकारी वाला गीत सुनाया, उस विच भी जो साडे खत नहीं पड़े गए, पर मैं तुहानू कहा सी कि गीत ही चलेगा जी फुलकारी दा। ते लो जी, गीत तो पहला या इनफॉर्मेशन तो पहला गल कर लैने जी तुहाडे खतां दी। लिख रहे ने सानू जिला रतलाम मध्य प्रदेश तो, लिख रहे ने बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति अतुल, पायल, प्रियांश ते ऋषि वर्मा। जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह पाटिया, इंजर, नवनीत ते पप्पी पाटिया। जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो लिख रहे ने रामनाथ अतापुर, रामनाथ, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर ते सारा परिवार। चुकला बाजार समाणा तो लिख रहे ने पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल ते हसमुख जिंदल। श्रीगंगानगर तो लिख रहे ने बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार ते नरेश कुमार। ते लाओ जी, हुण इनफॉर्मेशन दी वारी है जी। सूई धागा दी गल कीती है ते 2018 रिलीज़ होई एक बॉलीवुड दी फिल्म सी केड़ी, सूई धागा। ते खैर मैं फिल्म दी गल नहीं करनी, इनफॉर्मेशन जो है तुहानू देनी है जी। ये जो है सूई धागा जो है फुलकारी ते भी कढ़िया जांदा है ते कॉटन दे कपड़े विच भी जो है इसदा जो है इस्तेमाल कीता जांदा है। ते इतिहास दी जे मैं गल करां ते इतिहास जो है पंजाब दी अमीर जो है कढ़ाई कारीगरी अते सभ्याचार नाल जुड़िया होया सूई धागे दा रिश्ता। सूई अते धागे दी वरतों करके कपड़िया उत्ते नक्शकारी जो है करन दी परंपरा सदियां पुरानी है। तुहानू पता है इस कला दे जो प्रमुख पहलू ने वो तुसी बखूबी जान दो, जिवें कि तुहानू पता है कि हर घर विच, हर पिंड दे घरां विच जां पंजाबी

और गुंजन लालसा, रमा कुणाल, निधि हरीश, सतीश, राकेश, विनोद पाली, डीसी अरुण, नेहा, एकता, शम्मी, बोधी, सुनील, वीके पुरी, आर एस पुरी, सुरेंद्र कौर, आशा सिंह ते सारा परिवार। मोता सिंह नगर तो लिख रहे ने, मनोज जैन, समता, अरहन, वसल, डॉलर, जैन, बिट्टू, राजा, राकेश ते सारा परिवार। तो इन्हों सारे नू सुना रहे जी अमन नूरी ते साथियों की आवाज़ में गीत है। तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

सुन सबद तुम्हारा मेरा मन पीना। प्रभु दा शब्द ब्रह्म है, शब्द तुनात्मक भी है ते वर्णात्मक भी, शब्द गुरु है ऐसा बाबा नानक जी ने फरमाया सी। शब्द गुरु सुरत तुन चीला, जदों इंसान दी सुरत प्रभु दे शब्द विच तुर अंदर तक प्रवेश कर जांदी है, अर्थात उस दी सुरत अते मन प्रभु दे शब्द दे अनुसारी हो जांदे ने तां प्राप्ति हो जांदी है। अज्ञानता दा हनेरा मनफी हो जांदा है, शब्द दे नाल ज्ञान दा प्रकाश हो जांदा है, इंज महसूस हुंदा है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बिनास, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास। दरअसल सच्चा गुरु दीपक गुरु है, गुरु दा शब्द ऐसा दीपक है जिस दे उजाले दे नाल अज्ञानता दा हनेरा बिनस जांदा है, मन मंदर दे द्वार खुल जांदे ने, मानो रत्ना दी कोठड़ी खुल जांदी है ते अनूप प्रभु दे दर्शन दीदार हो जांदे ने। ऐसा राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दुपदे कर सतवां सिरलेख अधीन उचारी गई बाणी च फरमाया गया है। सतगुर सबद उजारो दीपा, बिनस्यो अंधकार ते मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। सरवण करदे हां डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

सतगुर सबद उजारो दीपा, बिन सेव अंधकार ते मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। इस शब्द का गायन किया सी डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। साहेब श्री गुरु नानक देव जी राग गौड़ी च उचारी गई एक रचना च गौड़ी महला पहला दखणी सिरलेख अधीन उचारे गए शब्द च फरमाउंदे ने कि सच्चे गुरु दी यही सिख्या है, अकाल पुरख पासों सच्चे नाम दी दात प्राप्त करके तन ते मन सीतल हो जांदे ने, ते मन इस तरह निर्लेप हो जांदा है जिस तरह जल दे विच कमल

मेरा मन शब्द लगो गुर मीठा, खुल्यो करम पयो परगासा, कटकट हर हर डीठा। इस शब्द गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत

0: आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बिसेत सिंह मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ। ਸ਼ਾਮ 6:30 ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਮਾਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਾਰਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਮ 7:40 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਰਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਨੀਮਲਿਜ਼ਮ ਲਾਈਵਨਿੰਗ ਮੋਰ ਵਿਦ ਲੈੱਸ, ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਰਾਤ 8:00 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਰਾਤ 9:15 ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਰਾਤ 9:30 ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ। ਰਾਤ 10:02 ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸੁਰ ਸਾਧਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਗਰਗ ਦਾ ਗਾਇਆ ਰਾਗ ਰਾਗੇਸ਼ਵਰੀ। ਤਬਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ।

0: 10 लाख दी लॉटरी मेरी।
1: फसी फर्जी ऑफर्स तो सावधान।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनो सुचेत रहो।
4: आ हुण सुनते हैं आकाशवाणी दा टाइटल सॉन्ग।

0: हाँ जी बाल साहब, कमाद की फसल जिदा आप सारी जानते हैं कि पंजाब दे विच एक बदल है कणक झोने का।
1: जी
0: तो पर आप ये कहने कि सारे रकबे दे विच तां चलो कोई भी फसल नहीं आप कह सकते,
1: हाँ जी
0: पर यह कि फसली भिन्नता दे विच कमाद की फसल में लियाना बड़ा जरूरी है।
1: जी
0: एक तो घर दियां लोड़ां देखो
1: सही गल है जी,
0: साड़ियां वो पूरियां होंदियां है,
1: हाँ जी
0: दूजा यह है कि ये व्यापारक समर्था इन्नी आज देखो कमाद एक जिदा कहने कि ना फुल फुलैज इंडस्ट्री बन गया,
1: बिल्कुल जी,
0: शक्कर तां बिकदी है,
1: हाँ जी
0: गुड़ तां बिकदा है, अलग
1: बिल्कुल
0: अलग
1: जी,
0: तरह की शक्कर अलग अलग तरह के गुड़ के प्रकार बन के
1: हुण तां तेल विच भी जी एथानोल पैण लग पिया, वह भी कहिंदे गन्ने तों बणदा
0: गन्ने
1: है,
0: तो बनता है।
1: बिल्कुल जी,
0: सो इस करके आने वाले समय की भी जिदा कह सकते हैं कि
1: हाँ
0: प्रमुख
1: जी
0: फसल है,
1: सही गल है
0: पर
1: जी।
0: इस फसल के जिदा कहने कि जे बिजाई वेले आप वेसले रह गए
1: अच्छा जी,
0: जिदा वो कहते हैं भी बी पाइए चुण के तो पानी पीए पुण के,
1: हाँ जी
0: ये फसल का बीमारिया तो फिर सुधार आप नहीं कर सकते।
1: ठीक है जी,
0: ये तो जो पहलों ही आप उपराले कर ले
1: अच्छा जी
0: बाद जो है साढ़े हाथ पले जिदा कहने कि तो बच नहीं सकते आप बीमारियों तो।
1: ठीक है जी,
0: कमाद की काश्तकारी के बाबत सारे ढंग तरीके देखभाल गुलजार सिंह संघेड़ा डॉक्टर साहब आए थे, जानकारियां साझिया करके गए, आप साझिया करते हैं।
1: जरूर सुनते हैं जी।
2: किसान वीरो इत्थे मैं तुहानू शुरू करन तो पहला एक चीज़ दसांगा कि असी हाल ही दे विच साडी खेतरी खोज केंद्र कपूरथला की टीम ने अलग अलग खंड मिलों के कमांड एरिए दे विच दौरे किए ने। इत्थे ये दसना तुसी बधाई दे पात्र हो कि इस साल अगर इस मौके असी देखिए जो साडी कमांड की फसल इस वेले खेतों के खड़ी है, चाहे वह आसू वाली फसल है, चाहे वह मोढ़ी फसल है, जां वह फग्गण महीने की बिजाई की हुई है, वह फसल है इस वेले वो फसल अपने पैरां ते बिल्कुल सही लगी हुई है। पर उस सर्वे के दौरान सानू कुछ चीज़ां देखने को आईया ने, वो सर्वेक्षण के दौरान सानू कुछ पता लग्या है जो असी तुहाडे नाल शेयर करांगे कि अगर अस टाइम असी उदी सांभ संभाल करते हैं तो आने वाले समय के विच जदों कि फसल ने पक के तैयार होना, गन्ने पक के तैयार होने ने, तो साडा वो नुकसान नहीं कर सकदी। तो किसान वीरो इस वेले सब तो पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि इस वेले गर्मी पूरी पै रही है, चलो बिच बार मीह भी आ रहे हैं, तो गन्ने नूं जड़ा पानी है वो लगाना बड़ा जरूरी है, जो कि तुसी 7 तो 10 दिन के अंदर मतलब सिचुएशन नूं देख के मीह का हिसाब किताब देख के, क्योंकि अजकल फोरकास्टिंग आ रही है, वो दिता जाए। प्लस जिवें कि हुण जुलाई के महीने अगे मानसून आनी है, जिवें कि पिछले बहुत ज़्यादा मीह पे सीगे, खेतों के पानी खड़ गया सी, पानी खड़न दे नाल उहदियां अक्खां फट गईयां सी, अक्खां फटन दे नाल उत्थे जड़ां आ गईयां सी। तो इत्थे मैं ये दसना चाहूँगा कि जिथे अगर कोई इस तरह की नौबत आउंदी है, वो पानी खड़दा है, तो उस पानी नूं अपने खेत तों बाहर कढ दईए ताकि साडे गन्ने की फसल ते कोई नुकसान ना होए। दूजी गल एक होर शेयर करांगा कि जिथे किते साडियां हल्कियां जमीनां दे विच जिथे वो फग्गण वाली बिजाई हुई है, उत्थे किते किते जिहड़ी है वो लोहे की घाट नज़र आ रही है, जिहनूं कि असीं आयरन की डैफिशेंसी कहने हैं, तो जिथे तुहानूं वो हल्के पीले चिट्टे रंग दियां पत्तियां धारियां नज़र आउंदियां ने, तो उत्थे तुसीं लोहे की होर वो कई बार की करते हैं कि असीं उत्थे उल्ली नाशक की स्प्रे कर देने, कदे असीं कीटनाशक की कर देने, उहनूं चंगी तरह सर्वेक्षण करके, तो उत्थे जिहड़ी लोहे की घाट है तो उत्थे असीं फैरी सल्फेट लोहे की ही स्प्रे करनी है। उहदे लई असीं 1 किलोग्राम फैरी सल्फेट नूं 100 लीटर पानी दे विच घोल पा के ते पर एकड़ दे हिसाब नाल उहदी स्प्रे करनी है और 15 दिन बाद जिहड़ी उह दुबारा रिपीट कर लेनी है। तीजा असीं गल करांगे कि जिदां हुण असीं इस समय आलमोस्ट खादां दा बाकी प्रबंधन पूरा कर चुके हैं,

रस चूसते हैं वो सवेरे सवेरे जड़े कि ज़्यादा एक्टिव होंगे हैं, दोपहर के टाइम वह रस चूस के फिर थले ठंडे एरिए चले जाते हैं, वो गोभ के चले जाते हैं। तो अगर इनू आप कंट्रोल करना है तो उदे लई जो पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी तो सिफारिश की है कि 350 ml कलोरो की जी स्प्रे है वो कर लेनी चाहिए है। पर इत्थे ये देखना जरूरी है कि जो स्प्रे करनी है वो स्प्रे किसी भी लाइन के क्रॉस सैक्शन नहीं करनी, दाएं बाएं नूं घुमा के पंप की नोजल की नहीं करनी, उसकी नोजल की जी अगे टिप है तीरी है उन्होंने थोड़ा जिहा खोल के लाइन टू लाइन करनी है ता जो दवाई जो है वो दवाई उस गोभ दे विच जावे जिथे कीड़ियाँ बैठिया ने। और 15 दिन बाद एक बार इन्हों दुबारा रिपीट कर लो तो ये जो काला खटमल है जो काली कीड़ी आप कहते हैं ये आप रोक कर सकते हैं। ये नाल ही क्योंकि हूँ ग्रैंड ग्रोथ स्टेज आ गई ही है, हो सकता कि जो आप तीजी डोज पानी है तो उस टाइम की है कि जरा कमांड का घोड़ा जिन्हों की आप परेला कहने हैं जो असी लेट नाइट्रोजन की डोज पाते हैं तो ये गन्ने कूड़ा तो कच्चा करता, उस स्टेज दे विच आ कमांड दे घोड़े का अटैक आ जाता। इहदे जिहड़े बच्चे हैं वो रस चूसते हैं, जो रस चूसते हैं तुसीं देखोगा उहदे ते बाद वो जो मरते हैं उहदे सूती मुल पत्ते काले हो जाते हैं, जो पत्ते काले होंदे हैं तो उन्होंने जानवर भी नहीं बाद विच खाते। तो अगर इहनूं कंट्रोल करना है तो 600 ml कलोरो 400 लीटर पानी दे विच घोल के उहदी स्प्रे कर दिओ ता जो आ जो कीड़ा है उहदी रोक हो जाए। प्लस इस टाइम इहदे इस कमांड दे घोड़े लई एक होर ध्यान रखना कि उत्थे एक मित्र कीड़ा भी इहनूं मारदा है, अगर तुसीं सर्वेखण करदे हो रैगूलरली चैक करदे हो अगर तुहानूं मित्र कीड़ा उत्थे नज़र आउंदा है उहदी तादाद हैगी है तो फिर सानूं स्प्रे नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह इहनूं काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लैंदा है। इहदे नाल ही जदों गन्ना बन के तैयार हो जाना है अगस्त सितंबर दे विच असीं देखते हैं कि कई बार जो लास्ट के असी जाते हैं तो साडा जिहड़ा कमांड है असीं कहिंदे हां कि गन्ना काणा हो गया, काणा इस करके हो गया कि उत्थे जिहड़ा साडा स्टैम बोरर है जिहड़ा तने का गड़ुआ है वह छोटी दी मोहरी करके उहनूं उहदे अंदर चला जाता है और बाद चो अडल्ट उन्हों नुकसान करके बाहर निकल जाता तो उहदा जिहड़ा एक्सक्रीटा है वो उत्थे लग्या हुंदा जिहड़ा कि जदों असीं गन्ने नूं कटदे हैं उहदे अंदर का जिहड़ा गुद्दा है उहनूं लाल कर दिंदा तो वह सासी कहते हैं कि गन्ना काणा हो गया क्योंकि उस टाइम गन्ना बन चुका हुंदा उहदा छिलड़ तगड़ा हुंदा, दवाई कोई हुंदी नहीं साडे कोल उहदा कोई कंट्रोल नहीं है। पर अगर इहनूं करना है तो सानूं जिहड़ा वो ट्राइकोकार दी आपां गल कीती है जे अगर तुहानूं वो उस तरह की कोई निशानी नज़र आउंदी है मट्टी ते कोई मोहरी नज़र आउंदी है तो आपां उही ट्राइकोकार जिहड़े हैगे हैं वो 40 पीस प्रति एकड़ के हिसाब नाल लगा के 15 दिन के बाद उन्हें रिपीट कर लीए तो काफ़ी हद तक इस कीड़े तो भी आपां बच सकते हैं। इस तो इलावा कुछ माइनर कीड़े हैं उन्होंने घबराने की जरूरत नहीं, जिदा कि आप जू की गल कर लीए चिट्टी मक्खी की गल कर लीए तो वह प्रबंधन भी मतलब देख के कर सकते हैं कि इन केस कोई ज़्यादा इंसीडेंस ना हो। नैक्सट पॉइंट अगर गन्ने की संभाल की गल करते हैं तो वो कि सब तो बड़ी एक अहम आस्पैक्ट है गन्ने की सामभ संभाल का वह है गन्ने बीमारियाँ। इस समय किसान भीरो असी जानते हैं कि गन्ने दी बीमारियां दा इलाज घट है परहेज़ ज़्यादा है और इस स्टेज ते जो भी गन्ने दी बीमारियां ने वो इस वेले गन्ना पूरा नहीं बनिया, गन्ने दे हले बूझे बन रहे ने, टिल्लर बन रहे ने, शूट्स बन रहे ने, वो बीमारी पत्तियां तक ही है। तो जे असी पत्तियां दे विच चाहिए तो उन्हों कंट्रोल कर लीए तो सौखा, जो गन्ना बन के गन्ने की मट्टी के अंदर वो जूस दे विच चली गई फिर उन्हों का कंट्रोल बहुत औखा है क्योंकि उन्हों उल्ली नूं फिर बहुत ज़्यादा खुराक मिल जाती है क्योंकि अंदर ग्लूकोज बनिया हुंदा जिहड़ा कि उल्ली नूं एक रेडीमेड गज़ा खुराक मिल जाती है तो वह बहुत जल्दी फास्ट चलती है और जदों ही फिर गन्ना बन के साडा सितंबर अक्तूबर दे विच आउंदा उदों फिर उस बीमारी के असर आने शुरू हो जाते हैं, गन्ना सुकना शुरू हो जाता है, कई बार उसे सोकड़ा पै जाता। तो मैं गल करांगा जे गन्ने दे कैंसर की जिदा कि रत्ता रोग रैड रॉट, इस टाइम अगर आप खेत के जाते हैं और जिते कि 238 या कोई होर वरायटी लगी हुई है तो उसी पत्ते की बैकसाइड पर जी पत्ते की हड्डी है जिन्होंने आप मिड रिब कहने उत्थे कंटीन्यूस अगर लाल भूरे रंग दे तुहानू उस स्ट्रिप्स के नज़र आउंदी है निशानी क्योंकि हर कई बार फिजिकल डैमेज भी हो जाता वह लाली मार दिंदा बट वो रैड रॉट नहीं, वो जो पत्ती है वो कंटीन्यूसली एक छोटा स्पॉट नहीं होगा बड़ा स्पॉट होगा और बिल्कुल वो मिड रिब के नाल बैकसाइड पर बनया होगा भूरे लाल रंग के धब्बे होणगे। अगर वो उस तरह की चीज़ है तो वो ये है कि

0: में बताया, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और इसमें हम इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं और फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था सर, वेरी दे आर वेरी पॉजिटिव एंड दे इंश्योर कि हाँ वो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इनके अंदर, तो बहुत प्रॉफिटेबल स्कीम्स हैं ये। इवन हम सब ने भी, खुद भी स्टाफ का भी जो आफ्टर 2010 की ज्वाइनिंग्स हैं सबका NPS ही है, तो दे ऑल आर वेरी गुड स्कीम्स एंड बेनिफिशियल ऑल्सो। हाँ, एनी वर्कर नाउ, अभी इनकी जो न्यू लेटेस्ट स्कीम है उसमें 18 to 85 ईयर्स तक एनी वर्कर, डेली वेजर वर्कर हो, कोई भी और वर्कर हो, वो एनरोल कर सकते हैं। PFRDA की टीम से आप कर सकते हैं, हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर कर देंगे, उनसे कर सकते हैं। बाकी बैंक्स में भी हैं, बैंक के भी सबके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं, वो आपके अकाउंट ओपन कर देंगे।
1: मैं अविनाश पांडे, जोनल मैनेजर यूको बैंक जालंधर। आज PFRDA और यूको बैंक ने यहाँ NPS संचय का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है। इसमें किसान भाइयों और जो हमारे कामगार लोग हैं जो डेली के हैं, उनके लिए नई स्कीम लाए हैं यहाँ NPS संचय के नाम से। इसमें फंड किसी भी अमाउंट से आप शुरू कर सकते हो और इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है, आप कभी भी जब आपके पास पैसे आए, जब आप किसानों ने फसल बेची या वहाँ से पैसे आए या कामगारों ने जो काम किए, तो उनको जो भी पैसे, जो भी बचत अपनी आती गई, उससे जो पैसा फंड वो संचय किया, नाम में ही है संचय, तो जो संचय किया उसको आप 15 साल तक मिनिमम इसमें रखना है या 60 साल, जो समय पूरा हो पहले, आप उसके बाद आप पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें अच्छी, एक तो आपके पास फंड एक्युमुलेट हो जाता है और जो बुढ़ापे के लिए आपके लिए पास एक रेगुलर इनकम एक होनी चाहिए, जो कि किसान भाइयों के साथ क्या होता है कि शरीर मजबूत है, अभी आप कमा रहे हैं, आप बुढ़ापे में वो क्षमता किसी की रह नहीं जाती, या मजदूरों के साथ भी सेम चीज़ होता है, वो क्षमता रह नहीं जाती, तो उनके लिए ये PFRDA ने एक स्कीम लॉन्च की है नई, जिसमें कि इनको भी शामिल किया गया, पहले और स्कीमों में फिट नहीं बैठ रहे थे, तो इसमें लाए हैं PFRDA नई स्कीम। तो इसमें क्या है कि इन लोगों को अच्छा सरल किया गया है स्कीम को, जिसके माध्यम से ये इससे जुड़ सकते हैं और अपने बुढ़ापे के लिए, जो पैसा बहुत ज़रूरी है, हर चाहे उम्र का जो भी दायरा हो, जो भी समय हो, हर समय के लिए पैसे बहुत ज़रूरी हैं और बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो उस समय के लिए आप ये पैसा इकट्ठा करके और वहाँ पे पेंशन उठा सकते। इसमें कोई भी स्कीम, बहुत फ्लेक्सिबल स्कीम बनाई गई है, जब मर्जी तब पैसे दीजिए, मतलब जब किसान के पास बचत आए, पैसे आए, उसने मान लीजिए फसल बेची या कहीं से और पैसे आए उसके, वो पैसे इसमें जमा कर सकते हैं, धीरे धीरे संचय किया और वो बुढ़ापे में उसको पेंशन के रूप में उपयोग कोई भी कर सकते।
2: मेरा नाम संदीप कौर है, मैं क्रिसिल फाउंडेशन तो MIS एग्जीक्यूटिव, मैं 4 स्टेट देख रही हूँ, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। बेसिकली साडा काम की है गया कि अवेयरनेस प्रोग्राम करने पिंडा में जाके, सर RBI का एक प्रोजेक्ट चल रहा है मनीवाइज, जिदे विच असी बैंक दियां पॉलिसीज अवेयर करते हैं लोगों नूं पिंडां विच जाके, छोटे वड्डे कैंप करके, डोर टू डोर एक्टिविटी करके, इहदे विच असी सारियां ही बैंक दियां पॉलिसीज बारे दसदे हां, जिवें कि इंश्योरेंस होगी, नैशनल पेंशन योजना होगी, बैंक खाता किवें ओपन करना, फ्रॉड तो किवें बचना, यह सारियां छोटिया छोटिया स्कीम्स जिहड़ियां लोगों तक नहीं पहुँचदियाँ, उन्हां नूं असी घर घर जाके समझाने हैगियां लोगों नूं, उन्हां नूं दसदे हैगे कि तुसीं किवें बैंक दे नाल जुड़ना है, बैंक थोड़ी किवें सहायता कर सकता है। ये सारिया चीज़ा असी लोगों नूं जाके समझाईदा है कि डॉक्यूमेंट लगते ने, किवें तुसी बैंक दे विच जाके जानकारी लै सकते हैगे हो। इहदे विच जिवें कि अज दा प्रोग्राम हैगा NPS आउटरीच प्रोग्राम यूको बैंक ने करवाया, इहदे विच NPS नैशनल पेंशन योजना बारे दस्सिया गया कि असी 18 साल तो लैके 60 साल तक इहदे विच इनवैसटमेंट कर सकते हैं, 250 रुपये तो स्टार्ट कर सकते हैं असी। बेसिकली अगर एक दिन की अमाउंट असी शुरू करिए तो 17 रुपये एक दिन की अमाउंट स्टार्ट कर सकते हैं, महीने की 500 रुपया जमा राशि कर सकते हैं, अगर साल की भी करना चाहिए तो साल की भी असी एक फिक्स अमाउंट जी कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है कि तुसी हर महीने फिक्स अमाउंट जमा ही करनी है, तुसी अपनी मर्जी के नाल 6 महीने च एक बारी कर लो, साल च एक बारी कर लो, जिवें जिवें तुहाडी इनकम हैगी है उवें उवें तुसी इनू इनवैसटमेंट कर सकते हो। नॉर्मली असी देखते हैं कि जो गरीब लोग ने और डेली नहीं पैसा कढ़ सकते, वह तो जिमें कह लो कि दिहाड़ीदार होंगे, वह 500 रुपया ही कमाते एक दिन का, अगर वह 500 रुपये के 17 रुपये भी कमा तो महीने का 500 रुपया वह इन्वैसट कर सकते है इस स्कीम च। अगर थोड़ा सा इस तो उपर चले जाइए कि जेडे मंथली इनकम लै रहे है प्राइवेट सैक्टर च जा पब्लिक सैक्टर के काम कर रहे हैं, उन्हों का वो फिक्स एक अपनी अमाउंट फिक्स कर सकते हर महीने हर साल।

0: ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਪਸ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਢਾਪਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਖਰਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ।
1: ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਰਣ ਹੈ, ਮੈਂ PFRDA ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੂੰ। ਆਜ ਹਮਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਊਟਰੀਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਆ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ, PFRDA ਸੇ 120 ਆਊਟਰੀਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ NPS ਸੰਚਯ ਕੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੋ ਸਪਰੇਡ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਇਸਮੇਂ ਹਮਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ NPS ਸੰਚਯ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰੀ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ NPS ਸੰਚਯ ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ 18 ਸੇ ਲੈ ਕੇ 85 18-85 ਈਅਰਸ ਕੀ ਏਜ ਕਾ ਹੈ वो NPS संचय का अकाउंट ओपन कर सकता है। अकाउंट ओपन करने के लिए जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो 250 रुपये है। एक बार आपको 250 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद में इसके आप मिनिमम 10 रुपये भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसिक्वेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो 10 रुपये भी है। तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन आपका 250 रुपये रहेगा और उसके बाद आप 10-10 रुपये कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें आप सभी को अकाउंट ओपन करना चाहिए और आपके फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए। यहाँ पे एक डिटेल प्रेजेंटेशन हुई, उसमें हमने ये भी बताया कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है। तो उसमें हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई 20 साल का अगर कोई नॉर्मल नागरिक है वो एक अकाउंट ओपन करता है और अगर वो दिन के 33 रुपये कंट्रीब्यूट करता है, 33 नहीं हो सकता पर सपोज 10 के 3 करके 30 कर दे, दिन का 30 होगा और महीने का लगभग 1000 रुपये हो जाएगा। उसका कॉर्पस जैसे हमने देखा था 48 लाख हो रहा है और उससे उसको 23,000 पेंशन मिल रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि NPS संचय में अकाउंट ओपन करें।
2: AC भारत सरकार दे नेशनल पेंशन सिस्टम वालों करवाए प्रोग्राम ते आधारित रेडियो रिपोर्ट, सहायक सोनिया अते रवि शंकर, पेशकश आकाशवाणी जलंधर।
3: हुन पेश है आकाशवाणी दा टाइटल सॉन्ग।

0: जाएगा।
1: जी हाँ, दोस्त कदों दुश्मन बन जाए तो दुश्मन कदों दोस्त बन जाए, कुछ पता नहीं लगता जिंदगी दा।

0: वसी एक्सेप्ट करना है, मन के चलना है, दिल छोटा नहीं करना किसी भी कड़ी दे विच। जेकर आज इंसान दे सुख दे विच है तां किसी तरह का कोई ईगो या कमंड नहीं रखना, क्योंकि वक्त बदलदिया वक्त नहीं लगता। ते जेकर दुख दा दौर चल रहा है तां भी हिम्मत रखनी है, यह दौर भी खत्म हो जाएगा। तो इसे दे नाल ही साडा अज दा ये प्रोग्राम जिंदगी हसीन है इत्थे ही खत्म हुंदा है। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले रात के 8:45 हो जा रहे हैं। हुण तो कुछ ही पलों बाद तुसी सुनोगे समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 बजे प्रोग्राम स्पॉटलाइट साढ़े दिल्ली केंद्र तो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ
2: मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मानसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश

0: केटी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
1: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के 7वें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ

0: द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 trillion तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज शाम राष्ट्रपति भवन विखे दूजे सिविल सम्मान समारोह विच पदम अवार्ड प्रदान कीते। डेरा सचखंड बल्लां दे अध्यात्मक आगू संत निरंजन दास जी अते झाड़ू योद्धा साबका IPS अधिकारी सरदार इंदरजीत सिंह सिद्धू नूं पदम श्री नाल नवाजिया गया। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि भारतीय झंडे वाले 10 समुद्री जहाज फारस की खाड़ी खेतर विच मौजूद ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों नूं नागरिक देवोभव की सोच नाल नागरिकां नूं शासन दे केंद्र विच रखण की अपील की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो कारण संभावी माड़े प्रभावों नाल नजिठण विच किसानां दी मदद करन लई पहलां तो तैयारियां कर रही है। नैशनल टैसटिंग एजेंसी NTA ने अंडर ग्रैजुएट दाखलियां लई अज सांझे यूनिवर्सिटी दाखला इम्तिहान CUET 2026 दे नतीजे ऐलान दिते ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब राज बिजली कारपोरेशन लिमिटेड विच नवे नियुक्त होए उम्मीदवारां नूं नियुक्ति पत्र सौंपे। पंजाब सरकार वल्लों दिव्यांग जनां दी आर्थिक सुरक्षा लई चालू माली साल दौरान 125 करोड़ तों वध दी रकम जारी। पंजाब सरकार वल्लों पलके मोहाली स्थित MT यूनिवर्सिटी विखे NRI मिलनी 2026 प्रोग्राम कराया जा रहा है। स्थानक सरकारां बारे मंत्री हरजोत सिंह बैंस दे अचनचेत निरीक्षण पिछों सफाई विच उणताईयां करके मोगा दे नगर निगम कमिश्नर नूं कारण दसो नोटिस जारी। गुरदासपुर दे सठियाली हैड वर्क्स नेड़े अपर बारी दुआब नहर विच बीते दिनी पए 100 फुट दे पाड़ नूं पूरन दा काम अज वी जारी। विभाग वल्लों काम छेती पूरा होण दी उम्मीद। मौसम विभाग वल्लों पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ विच कुछ थावां ते 26 जून तक गरज चमक नाल हल्की तो दरमियानी बारिश होण बारे येलो अलर्ट जारी। अते भारतीय निशानेबाजा ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप विच अज 2 चांदी दे अते 1 कांसी दे तमगे समेत 3 होर तमगे जीते ने। ए सन हुण तक दियां मुख खबरां। ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण पेश है शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना। अज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे डॉक्टर योगेश गर्ग दा गाया राग रागेश्वरी। एना दे नाल तबले ते संगती कर रहे ने हरसिमरन सिंह ते हारमोनियम ते साथ दे रहे ने राकेश कुमार।

0: साढ़े 10 बज चुके ने। वेला ए प्रोग्राम सरगम दा सुनदे आं बस कुछ ही पलां च।
1: इंग्लैंड दी धरती ते भारत दीआं धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।
0: आकाशवाणी जलंधर ते पेशे प्रोग्राम सरगम। इस प्रोग्राम दा पहला गीत फिल्म स्वीकार किया मैंने तो आवाज़ लता मंगेशकर दी। गीत बोल लिखे निदा फाजली ने ते संगीत दिता उषा खन्ना ने।

0: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने

0: पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बिल्कुल जी, सानू सार गया विसर गया वे केड़े पासे जाइए सचना। गीतें जगह रहे सतेंद्र सरताज साहब की आवाज़ के प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी। सौगात और मैं थोड़ा दोस्त अरुण इस वेल्ले थोड़े नाल आ चुके हैं। सो साडा नंबर है जी 0181 243 141, यानी कि 01812342171। सो यही नंबर डायल करके तुसी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो ते कर सकते हो जी अपने पसंदीदा गीतों दी फरमाइशां दे नाल गल्लां बातां। सो पहले कॉलर दोस्त भी आ गए ने जी। हैलो
1: हैलो
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सौगात विच।
1: सर जी नमस्कार जी।
0: जी कौन गल कर रहे हो ते कित्थों गल कर रहे हो?
1: सर जी मैं जनकराज जी गुरदासपुर तो बोल रहा जी।
0: हाँ जी जनकराज जी, की हाल चाल है थोड़े?
1: कृपा जी आप जी जी
0: चलो वधिया जी, वधिया बिल्कुल जी, कृपा बनी रहनी चाहिए है। ते पहली कॉल लग गई फिर अज किदा ट्राई कीता, किन्नी वारी लाया नंबर नाल ही लग गया?
1: हां जी 3 वारी लाया जी।
0: अच्छा 3 वारी लाया ते लग गया।
1: हाँ जी
0: हाँ जी, चलो बहुत वधिया गल है। तो कि गीत की फरमाइश लेके जुड़े हो?
1: सर जी फिल्म है जी सस्सी पुन्नु
0: जी,
1: आवाजा ना ने बिग पुत सोमा आ गया मेरा कल्ला कल्ला प्यार।
0: क्या बात है जी, बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़ी फरमाइश ते गीत प्ले करन जा रहा हूं। कॉल करने बहुत शुक्रिया जी।
1: थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू जी।
0: थैंक यू जी, थैंक यू। सो बिल्कुल दोस्तों, साढ़े वट्सएप नंबर पर भी लगातार दोस्तों के मैसेजेस जोड़े ने पहुँचने शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं जी, सब तो पहला मैसेज साढ़े तक किन का पहुँचे है। सो सब तो पहला मैसेज जोड़ा साढ़े तक पहुँचे है जी, वो है साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो गुरमीत सिंह मीता जी वालों। कहते हैं जी खुशनुमा महफिल सजी है। बिल्कुल जी सज गई है, तो सजी रहेगी लगातार रात 1 बजे तक, तो तुम भी नाल बने रहना, साथ देना। सो अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचे है जी, कृष्णा पार्क दिल्ली तो भेजे है सुखविंदर सिंह जोड़ा जी ने। इन्हों के नाल ने जी सी टी दीवाना जी, और इन्होंने एक गीत की फरमाइश की। फरमाइश अभी कुछ समय के बाद पूरी करांगे।

0: सो बिल्कुल जी, एक बड़ा ही प्यारा जहा गीत मेरा कला कला प्यार तुम इंजॉय कर रहे थे महेंद्र कपूर और उषा मंगेशकर जी की आवाज़ से भी इतने प्रोग्राम चल रहे जी। सो गा तो मैं थोड़ा दोस्त रहा इसलिए थोड़े नाल बनया हुआ। साड़ा नंबर है जी 0181-2342-41-171 यानी कि 0182-342-171 यह साड़ा नंबर है जी। इस नंबर के राही तुम डायल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो तो कर सकते हो अपने दोस्त अरुण के नाल गल्लां बातां ते नाल दे नाल अपने गीतों दी फरमाइशां। सो इस तो अलावा सानू वट्सएप मैसेज भी कर सकते हो जी। साड़ा वट्सएप नंबर है 9465536077 यानी कि 9465536077। सो मैसेजेस भी लगातार साढ़े तक पहुँच रहे हैं जी और कॉल भी अगली आ गई है जी। देखते हैं कौन आए ने। हेलो
1: हेलो वीर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुखात विच।
1: शुक्रिया वीर जी, शुक्रिया। सुखबीर सिंह शाह जी बोल रहे हैं।
0: हाँ जी सुखबीर जी, की हाल चाल ने थोड़े?
1: ठीक ठाक वीर जी, थोड़े ना गल हो जाती है, हाल वधिया हो जाए।
0: चलो वधिया जी, सानू भी बहुत वधिया लगता है जदों दोस्तों दी कॉल्स आंदियां ने, गलबात हो जाती है, हाल चाल पता लग जाते हैं। तो होर सुनाओ किदां चल रही जिंदगी?
1: बहुत वधिया जी, प्यार आ जी सोचदे ना चली जावांगे बस आई
0: चलो। बिल्कुल जी बिल्कुल, प्यार बनिया रहना चाहिए। कहिंदे प्यार दे नाल ही जिहड़ी जिंदगी है ना, एक दूजे दे साथ प्यार, इहदे नाल बंदे दी लाइफ लंबी हो जाती। वैसे भी
1: हाँ जी, बाकी जलंधर साडा फेवरेट चैनल है, वधिया चैनल है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, थोड़े प्यार सदका ही असी हाँ। तो किहड़े गीत दी फरमाइश लैके आए हो?
1: कंठक देव जी दा दस्सो जी।
0: बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़ी फरमाइश पूरी करन जा रहा हां। कॉल करने लई बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया वीर जी, ओके,
0: थैंक यू जी। सो दोस्तों व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं जी, आओ देखते हैं किहड़े किहड़े दोस्तों के मैसेज पहुँच चुके हैं। सो मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी, गाँव कुमार हेड़ा सहारनपुर तो भेजा है सैयद मसरूर साहब ने। इन्हों के नाल है जी शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, तो सदाम, तो अदीप। तो एक मैसेज होर पहुँचा है जी, मैसेज देखते हैं कितों आया है। यह मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी मजनू का टीला तो भेजा है कमल बालूजा जी ने। इन्हों के नाल ने मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, गुड़िया माही मलिक, तो ईशिता अरोड़ा। तो एक मैसेज होर पहुँचा है जी, ये मैसेज आया है साढ़े को सरहिंदी बाजार पटियाला तो भेजा है प्रेम पर रहेजा जी ने। इन्होंने नाल ने कांता रानी, चरण रहेजा, डैनी, नीतू, ज्योत।

बिल्कुल जी, नारस हीरे मेरी गीत जगरे मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ से भी प्रोग्राम चल रहा है जी सौगात। और साड़ा व्हाट्सएप नंबर 9465536077 यानी कि 9465536077। इस वेले पूरा ही बिजी है जी, बहुत सारे मैसेजेस और लगातार दोस्तों के जोड़े साढ़े तक पहुँच रहे हैं। और अगला मैसेज साढ़े को पहुँचे है जी सूरज चौहान होना दा, तहसील थियोग डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश तो। और गुरदास मान साहब की आवाज़ से भी इन्होंने गीत की फरमाइश की है। तो फिर आओ जी फिर इन्हों की फरमाइश पूरी करते हैं इस प्यारे जे गीत के नाल।

सो बिल्कुल जी, नौकर की थे जो कह रहे हैं शेरीमान साहब की आवाज़ से भी तो प्रोग्राम चला जी। सौगात तो अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचा है नीदरलैंड तो, भेजा है रविंद्र पाठक जी ने और इन्होंने नाल जी आशा पाठक जी। बड़ा ही प्यारा जहा मैसेज हर बार की तरह इन्होंने भेजे है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी प्यारे जहाँ मैसेज के लिए। और परमात्मा थानू भी चढ़ती कला के रखे जी। और इन्होंने कहने जी अपनी पसंद का गीत सुना दे, तो बिल्कुल ठीक है जी। अज अपनी पसंद का गीत अभी थोड़े लिए प्ले कर जा रहे हैं। सो कॉल मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।

सो बिल्कुल दोस्तों, तुम इंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम। सो गात अपने दोस्तों ने नाल पर जरा समा है, मैंने इशारा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें इस प्रोग्राम को इतने ख़त्म करने के लिए तुम्हें दसा और थोड़े तो इजाजत ले ला। सो इस प्रोग्राम में मैंने इतने ख़त्म करने दी हो इजाजत, पर तुम कितने नहीं जाना, क्योंकि हम तो कुछ पलों के बाद अगला प्रोग्राम लेकर मैं फिर हाजिर होगा। तब तक बने रहो आकाशवाणी पंजाब के।

वडे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा कीता केवड चीरा। राग आसा विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उचारिया गया यह फरमान इस बात नूं स्पष्ट करता है कि ओ प्रभु सब तो वड्डा है, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। उसका कितना वड्डा विस्तार है इस बाबत भी कोई अंदाजा नहीं लाया जा सकता। जो इतना वड्डा है, सृष्टि का रचायता ते पालक है, तां ते फिर उस अगे सीस चुकाना ही बनता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी जप बाणी दी 28वीं पौड़ी तो लैके 31वीं पौड़ी तक बयान करते ने कि उस प्रभु नू नमस्कार है, उसनू सदा नमस्कार है। आदेश तिसह आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। सरवण करदिया जप बाणी विचों इन्हां पौड़ियां दा गायन, पौड़ियां दा गायन कीता है भाई इकबाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

आदेश तिसह आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। जप बाणी विचों इन्हां पौड़ियां दा गायन कीता सी भाई इकबाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। ओ सर्प कला समर्थ प्रभु दे अग्गे हर कोई नतमस्तक है, भावें ओ कोई साधारण जीव है जां फिर वड्डे तो वड्डा राजा भी है, क्योंकि ओ सृष्टि दा रचयिता आप मुक्ति दाता है, कुल सृष्टि नू तारन वाला है। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर कौ बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है। सरवण करदे हां डॉक्टर अलंकार सिंह होरां पासों इस शब्द।

0: नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु कौ बल बल जाइए, आप मुकत मोहितार है। आप जी सरवण कर रहे सो डॉक्टर अलंकार सिंह होरा वालों गायन कीता होया ए शब्द। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी सरबजीत सिंह।
1: ये पावन पवित्र शब्द शहीदां दे सरताज पंचम गुरदेव धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी हुणां दी मुबारक रसना तों उचारण कीता होया

ज्ञान त्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई गुरबचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: जोगत माणियो।
1: सतजुगत माणियो छल्यो बल बावन पायो, त्रेते तै माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरा।

गुण गावे रविदास भगत जै दी तरलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवै सहज

गुण गावे नवनाथ तन गुरु साज सुमायो मां ताता गुण रवे जेन चकरवे कहायो गुण गावे बलराओ सपत पताल बसंतो पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंतो दूर बापुर अंगरे गुर नानक जस गायो कब कल सो जस नानक गुर कट कट सह

अंतन पावत देव सबे मुनो इंद्र महासेव जोग करी फुन भेद बेरंच बेचार रहो हर जाप नशाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल।

0: कर जहन रसे कित फल फिके फूल बक बके कम न आवे पत मिठतनी भी नानका गुण चंगियाँ सब को नेवे आप पर को नेवे ना को धर दराज तोलिए निवे सगोरा होए अपराधी दुना निवे जो हंता मिर गाहे शीस नवाया क्या थी है जा रिदा कुछ दे जाए महला पहला
1: पढ़ पुस्तक।

आवी चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय।

अनफिटे फेड़ करें मन जुटे चुले परहेन। कहो नानक सच थाइए सच होवे ना सच पाइए पढ़ चुते अंदर सब।